ज्योति धर्म ज्योति धर्म ज्योति शांति रेडियो शांति रेडियो शांति रेडियो शांति रेडियो शांति रेडियो शांति रेडियो।

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ।

साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुमधुर भजनहरूको सन्ध्या कार्यक्रम भक्ति सन्ध्या सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

0: गीता ज्ञान।
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

0: झूले यहाँ सुंदर यूनुंचा एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेकबुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

नमस्कार आदरणीय श्रोता, जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सर्वमङ्गलममा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: कार्यक्रम सर्वमंगलम। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
2: जयश्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्रणाली का उत्कृष्ट उत्पाद।

0: ना कहे कोई परवाह ना कहे जलने को बेपरार चाहत का मुझ पे असर मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर मंजिल है मेरी प्यार
1: सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू।

0: बातों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी न समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू।

बेबसी सहमी सहमी हर घड़ी बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू श्रेष्ठ टेलरिंग रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: मैं और मेरी लड़ाई
1: ये प्यास क्यों नहीं बुझती?
2: पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
3: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: आशिक हो तो ऐसा हो,
1: दिल भर हो तो ऐसी हो।
0: के आशिक, के आशिक, के आशिक, आशिक, आशिक, आशिक, आशिक, आशिक हो तो

0: हाय।
1: सिर्फ आहें जो भरे उसको आशिक न कहो, दूर से प्यार करे उसको आशिक न कहो। गम में चुपचाप मरे उसको आशिक न कहो, जो जमाने से डरे

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ।
1: One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: చుచ్చే పాటి
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन गर्न अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

तो मोहब्बत के मारे झील किनारे प्यार की चांदनी में नहाते हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं जानते थे कि जिंदगी क्या दिखाने वाली है। बस अगले ही मोड़ पर बिछड़ने की घड़ी आने वाली है और फिर यूं हुआ

दिल और धड़कन दूर हो गए, मजबूर हो गए कि जिंदगी आजमाती है, हंस के रुलाती है, लेकिन दिन बीते और वो फिर मिले मगर खुशियों के फूल नहीं खिले, क्योंकि वो जान नहीं पाए, वो मान नहीं पाए। दिल और धड़कन मिले तो, पर अफसोस एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। और अब ये हाल है

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। अरे रे रे रे, इस धूम धड़ाकेदार जमाने में इधर उधर भाग दौड़ करने वालों, जरा रुक जाइए। हाँ, अमा 1972 के लाजवाब संगीत का दूसरा भाग शुरू हो रहा है आज गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम नंबर 35 में। इसीलिए तो जरा थम जाइए, जरा ठहर जाइए। देखिए मीना कुमारी की पाकीज़ा यादें भी आपसे यही तो कह रही हैं।

0: कमाल अमरोही की अमर फिल्म पाकीजा के इस छांव में छुपे हुए गीत को तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, मगर खुद मीना कुमारी ने, जो कमाल अमरोही साहब की हीरोइन ही नहीं बल्कि बीवी भी थी, उन्होंने मुझे बताया था जी हाँ कि गीत से पहले जो चार मिसरों का कता था ना, उसे मजरूह साहब ने नहीं बल्कि खुद कमाल अमरोही साहब ने लिखा था।
1: जी हाँ, इसका वो कता कमाल साहब का ही लिखा हुआ है।
0: दोस्तों, ये कथा तो आपने ठाड़े रहियों से पहले कई बार सुना होगा, पर आज जिंदगी में पहली बार इसे सुनिए एक नए रूप में, मीना कुमारी और लता मंगेशकर की जुगलबंदी।
1: चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है,
2: ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है।
1: आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद,
2: आज की रात बड़ी
1: आज की रात बड़ी देर के बाद आई है।
0: और इसी तरह जब बरसों बनते बनते रहने के बाद फिल्म पाकीजा मुकम्मल बन गई और उसकी रिलीज की रात आई तो पाकीजा तो हिट हो गई साहब, मगर 31 मार्च 1972 ही की रात मीना जी ही दुनिया छोड़ गई। खैर बहनों और भाइयों, उसको तो जमाना हो गया, अब चलिए मेरे साथ 1972 की सालाना संगीत सीढ़ी के दूसरे हिस्से में। उस साल की पायदान नंबर 37 से 23 तक के गीत तो आपने पिछले वॉल्यूम नंबर 34 में सुने, और ये आई झलक गीत नंबर 22 की।
3: एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार,
4: पहले चीज का नाम बताओ।
3: देखो हम पर शक ना ला।

0: ये फिल्म थी बाबुल की गलियां, और उस साल के गीत नंबर 21 ने तो भाई धूम मचा दी थी साहब। उसमें एक नई गायिका आई और सारे संगीत प्रेमी जो थे वो बोल उठे, वाह क्या आवाज है, क्या तैयारी है।
1: बोले

फिल्म गुड्डी के इस शास्त्रीय संगीत में डूबे हुए गीत को बताइए किसने गाया था? जी हाँ, नए गायिका वाणी जयराम ने। और किसके लिए गाया था? यस, उन दिनों की नई सुपर अदाकारा जया भादुरी के लिए। और गुड्डी ही थी जया

0: जयराम तो कुछ ही अरसे के बाद मुंबई के बॉलीवुड को छोड़कर मद्रास की फिल्मों में पहुंच गईं और वहां की अयो सुपर सिंगिंग स्टार बन गईं। अच्छा, वैसे गुड्डी के संगीतकार वो थे बैनोर भाइयों जिनकी शोहरत कुछ कुछ ढलने लगी थी तब तक, यानी गजब के सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई। उस साल एक और बड़े ही गुणी सुरों के जन्मदाता जयदेव की एक फिल्म आई पर ज्यादा नहीं चल पाई, मगर उस फिल्म मान जाइए कि एक और बहुत ही बढ़िया गीत के बिना तो हमारी गीतमाला की छांव अधूरी रह जाएगी। कौन सा गीत?
1: ये

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। और साहब, अब मैं छाव से चुना हुआ एक ऐसा गीत पेश करता हूँ जो 1972 में तो ज्यादा नहीं चला, मगर उसके करीब 15 साल बाद से आज तक जब भी वो किसी रेडियो या टीवी स्टेशन पर बजता है ना, तो नौजवान लड़के लड़कियां खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हैं। आप भी करेंगे जरूर। गीतमाला की छाओं में के इस पैक के कवर पर इसके जन्मदाताओं के नाम जरूर देखिएगा, मगर पहले गीत सुनिए जरा बचके।

अरे अरे, बंगले के पीछे हो रही आपकी हरकतों को देखिए देखिए कोई देख रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो चलेगा। खैर साहब, वो साल 1972 भी आरडी बर्मन का साल कहा जा सकता है। उस साल आरडी बर्मन यानी पंचम की 10-11 फिल्में चली और इसके बाद लक्ष्मी प्यारे थे 9-10 फिल्मों के गीतों के साथ, और शंकर जयकिशन की 7-8 और कल्याण जी आनंद जी की 4-5 फिल्मों के गीत भी काफी चले। आरडी बर्मन की एक बड़ी हिट फिल्म कारवां के तो कई गीत चले थे साहब, मगर एक बड़ा ही स्वीट गीत जरा पीछे रह गया था छांव में। तो याद कीजिए अपनी महबूबा की मतवाली आंखें।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में
1: कारवां चलेगा बहनों भाइयों, वो उस साल की संगीत सीढ़ी के हिट गीतों की झलकों का कारवां है जिसमें कुछ सितारे भी साथ साथ चलेंगे। तो देखिए पायदान नंबर 20 पर थी गुलाबी जवानियां फिल्म जीत की।

0: और साहब अब जरा मुस्कुराकर हो जाइए तैयार, क्योंकि गीत नंबर 19 से पहले आने वाली हैं दो गजब की यादें। पहली याद है कॉमेडी के शहजादे महमूद की, उनके बचपन के बारे में।
1: बचपन में हम बहुत मस्ती वाला चोकरा था, बहुत मस्ती करता था। मेरा वजह से बहुत चोकरा लोग को तकलीफ हुआ, नुकसान हुआ।
2: अच्छा,
1: मेरा माँ उसके वास्ते बोले को बहुत मारता था, हम मस्ती वैसा करता था।
2: ओहो,
1: मेरा आँख के अंदर गरम मसाला, काली मिर्च और लौंग का मसाला लगा के फिर बेत से मेरे को मारता था।
2: अरे वाह वाह वाह वाह,
1: आप वाह वाह करता, जो दूसरे को सुनाता वो लोग तो रोता है।

0: ऐसा करता था।
1: ओहो,
0: मेरा आग के अंदर गरम मसाला, काली मिर्च और लौंग का मसाला लगा के फिर बेत से मेरे को मारता।
1: अरे वाह वाह वाह,
0: आप वाह वाह करता, जो दूसरे को सुनाता वो लोग तो रोता है।
2: क्यों न साथ हिंदुस्तानी का ट्रायल महमूद भाई जान को दिखाया जाए, अगर उन्हें अमिताभ का काम पसंद आया तो शायद वो किसी बड़ी फिल्म में नौजवान अमिताभ को बड़ा रोल दे दें। तो साहब महमूद बुलाए गए, साथ हिंदुस्तानी का ट्रायल शुरू हुआ और उसके बाद क्या हुआ ये आप अमिताभ बच्चन ही से सुन लीजिए ना।
3: खैर साहब, भाईजान के लिए फिल्म साथ हिंदुस्तानी का ट्रायल रखवाया गया।
4: तो ट्रायल देखकर आपका काम उन्हें कैसा लगा?
3: यही सवाल मैंने डरते डरते उनसे पूछा तो वो उछल कर कहने लगे, अरे मेरा घोड़ा जीत गया, मेरा घोड़ा जीत गया।
4: अच्छा।
3: मैं थोड़ा निराश हो गया कि मेरे काम के बारे में तो महमूद भाई कुछ कह नहीं रहे, बस अपने घोड़ी की ही फिक्र है उनको। लेकिन बाद में अन्नू ने मुझे बताया कि महमूद भाई आजकल दुनिया की हर चीज को घोड़े के रूप में देखते हैं और जीवन का हर मोड़ उनके लिए रेस के समान है।
4: अच्छा अच्छा।
3: और वो मेरा घोड़ा जीत गया इसलिए बोल उठे थे क्योंकि उन्हें मेरा काम पसंद आया था और वे मुझे हीरो का काम भी देने वाले थे।
2: और भाई सचमुच बॉम्बे टू गोवा में महमूद भाई का वो घोड़ा बड़ी उछल कूद के साथ जीता और उनका एक उछलता हुआ गीत उस साल गीतमाला में नंबर 19 तक पहुंच गया।

दोस्तों अमिताभ की वो पहली धमा चौकड़ी आपने देखी थी ना, तो अब चलिए उस साल की पायदान नंबर 18 पर और सुनिए और खुद भी गाइए फिल्म लाल पत्थर का गीत।

अच्छा, उन दिनों एक मशहूर फिल्म के गीत 1972 और 73 यानी दो सालों के बीच बट गए थे, इसलिए दोनों ही बरसों में वो जरा नीचे नीचे ही रहे। एक तो इसके अगले साल नंबर 28 पर बजा, जिसे आप गीतमाने की छाओं के अगले पैक में शायद सुनेंगे, मगर 1972 में नंबर 15 पर था उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

0: वैसे उस साल रणधीर कपूर की कई फिल्में आई थीं, जैसे जीत, जवानी दीवानी और कल आज और कल, जिसके वो डायरेक्टर भी थे। लेकिन जब उन्हें खबर मिली कि उन्हें रामपुर का लक्ष्मण में रेखा के ऑपोजिट काम करना है, तो आप जानते हैं रणधीर किस तरह अपने पेट नेम की तरह डब्बू बन गए थे। लीजिए उन्हीं से सुनिए।
1: जब मैं रेखा को पहली

0: मिला तो मैं बहुत नर्वस था।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि सब लोगों ने मुझे कह रखा था कि वो बहुत खतरनाक है और मुझ जैसे भोले भाले लड़के को बेवकूफ बनाती है और यू नो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तुमने कैसा पाया उन्हें?
0: धीरे धीरे काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ और मैंने जाना और उसे पहचाना कि वो बहुत सीधी सादी और भोली भाली लड़की है।
1: अच्छा
0: जी हाँ, रेखा बहुत अच्छी कलाकार है, फिल्मी दुनिया में भी और अपनी असली जिंदगी में भी।
2: और साहब, रणधीर कपूर की यादों से टकराने के बाद अब चलिए नेपाल, जहां वहीं की एक लोक धुन पर गाया जा रहा था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत पायदान नंबर 14 पर।

बहनों और भाइयों, जीवन कितना मधुर, कितना प्यारा, कितना सुखी होता है जब तक आशिक और माशूक शादी के बाद पति पत्नी बनकर एक दूजे के पूरक बनकर खुशी खुशी साथ साथ जीवन बिताते हैं। और अगर उस जोड़े में से एक चल बसता है ना, तो कितनी उदासी छा जाती है बाकी रह जाने वाले पर। इसका एहसास मुझे फिर एक बार हुआ जब इस वॉल्यूम नंबर 35 की रिकॉर्डिंग के दौरान फरवरी 2012 में मुझे मेरे एक दोस्त ने बेंगलोर से फोन करके बताया कि आपको बताया है अमीन भाई, महीने भर पहले यहां बेंगलोर में महान गायक मन्ना डे की जीवन संगनी यानी हमारी सुलोचना भाभी का देहांत हो गया। मुझे धक्का सा लगा। मैंने फौरन बेंगलोर फोन किया उनके दुख में शिरकत करने। बड़े उदास थे मन्ना दा अपना 57 बरस का रिश्ता टूट जाने पर। और बहनों भाइयों, फिर मुझे याद आया 1972 ही की छांव का वो गीत जो लगता है जैसे शायद मन्ना डे ने अपनी इसी जुदाई, इसी सूनेपन का इजहार करते हुए आज दोबारा

बहनों और भाइयों, अब आगे बढ़िए मगर संगीत छेड़ी पर न जाइए, छांव ही में रहिए। यहां कुछ मूड बदलने की जरूरत है, इसलिए आइए झूम के सुने प्यार के सपनों का उसी साल का एक गीत, जिसकी धुन बनाई थी हिट संगीतकार प्यारे लाल के छोटे भाई गणेश ने, जो खुद भी बड़े गुणी थे पर कुछ कम चले।

दोस्तों, लाजवाब, मजेदार, सुमधुर, दिल को छू लेने वाले गीतों की कोई कमी नहीं थी उस साल भी। उनमें बहुत सारे तो गीतमाला में हिट हो गए और कुछ हमारी गीतमाला की छाओं के लिए बचे रहे। लीजिए एक बड़ा नाजुक सा गीत सुनिए, जिसकी फिल्म लाल पत्थर का एक और गीत आपने अभी कुछ देर पहले संगीत सीढ़ी की झलकों में भी सुना था।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। अच्छा भाई, अब जरा जल्दी से हो जाएं 1972 की संगीत सीढ़ी की तीन झलकें। पायदान नंबर 13 पर था गीत फिल्म धड़कन का, जिसे दो, जी हाँ, एक नहीं बल्कि दो मशहूर लोगों ने मिलकर लिखा था, एक तो प्रेम धवन और दूसरे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर

कुछ बरसों के बाद हो गई शादी। इस फिल्म के हीरो गोरे चिट्टे गोल्डन बॉय राकेश रोशन की इसी फिल्म के मशहूर प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की खूबसूरत और बेहद सुलझी हुई बेटी पिंकी से। और उसके बाद खैर बहनो भाइयों, आप सभी जानते ही हैं कि बाद में क्या क्या हुआ, बल्कि क्या क्या शानदार फिल्मी घटनाएं घटी राकेश रोशन के जीवन में। अभी तो 1972 ही में रहकर फिर चलिए उस साल की छाव में, जिसमें अब मैं ऐसा काम करूंगा जो गीतमाला की छाव में नॉर्मली नहीं करता, और वो ये कि एक ऐसा गीत पेश करूंगा जो उसके अगले साल यानी 1973 में गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी पर था जरूर, मगर बहुत ही नीचे था, यानी पायदान नंबर 35 पर। लेकिन गीत आया था 1972 में, और इतना खूबसूरत गीत था वो जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और पूरा पूरा बजने के काबिल है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ब्रिजभूषण, जहां ब्रिजभूषण याद है ना आपको नाम, जिन्होंने संगीत निर्देशन कम फिल्मों में किया मगर उनमें कई बेहद सुरीले नगीने पेश किए साहब। मगर वो फिल्में जरा छोटी यानी कम बजट वाली थीं और इसलिए ज्यादा नहीं वो चल पाई, और उनके लाजवाब गीत भी आए गए से हो गए। वैसे रेडियो टीवी और कमर्शियल फिल्मों में बोलने वालों में आज भी ब्रिजभूषण सुपरस्टार हैं, और ये और इनकी बीवी जाहिदा उर्फ मधुर भूषण यानी मधुबाला की छोटी बहन, ये दोनों मेरे रेडियो यूनिट के राजा रानी समान हैं। तो भाई सुनिए ब्रिजभूषण की धुन में ढला हुआ वो गीत, और याद कीजिए फिल्म का नाम।

6 বাজে। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को सन्ध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ सन्ध्याकालीन सेवामा शुभ सन्ध्या।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: ज्योति को संध्याकालीन प्रस्तुति सुर शब्द यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: गोल्ड प्यालेस, शुक्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ,
2: चिर परिचित, यहाँ श्रेष्ठ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: su Giorgi.
1: अध्यात्म ज्योति, अध्यात्म ज्योति, अध्यात्म ज्योति.

अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भटके हुए प्राणियों को राह दिखाओ।

सातवां अध्याय, शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ना। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब माता पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब वे अधिक व्याकुल होती हुई बोली, जनार्दन, आप मेरे पुत्र को निरा पशु ही बना देना चाहते हो। अवश्य ही इसके वध में आपका ही हाथ रहा होगा, क्योंकि आप किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से आपको यह भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी ना छीन ले, इसलिए शनैश्चर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहिता बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तक ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी ना, जो प्रायः सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए। तभी वहां खड़े हुए शनैश्चर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्री हरि तो शिव सभा में बहुत पहले से ही विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट भी कभी नहीं हुई। फिर यह तो जो कुछ भी करते हैं उसमें लोक हित ही निहित होता है। तब यह किसी भी आशंका पक्ष अथवा प्रमादवश भी ऐसा कर सकते थे। माता उमा बोली, तू भी मिथ्या कह रहा है शनैश्चर, जब तू नीचे दृष्टि किए रखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान श्री हरि को वहां बैठे हुए किस प्रकार देख लिया। इससे यही प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो, और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनि देव ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, जगजननी, आप शंका मत करिए। चाहे मैं किसी और नहीं देखता, तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आँखों से काम नहीं लेता तो क्या, मेरे कान ही समूचे दृश्य को मस्तिष्क तक पहुँचा देते हैं। फिर भी माता पार्वती जी को संतोष ना हुआ जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी, मेरे बल प्राकर्म से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कह रही हो। यदि मैं आपके बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही ना होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सिर कटवा लेता। विश्वास करो पार्वती देवी, ऐसा गर्हित कार्य कभी मैं नहीं कर सकता। फिर मेरा पद अक्षय है, उसका ना कभी नाश होता है, ना वह पराए हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी पद में जिनके अधिकारी निरंतर वहीं रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीनों ही परम शक्तिमान हैं, जिनका कार्य क्रमशः सर्गोत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे। तुम्हारी अन्य आशंका यह है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, वह कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसीलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो आपकी शंका निर्मूल सी है। जब आपके पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा, तब तो वह अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी। बस ऐसा लगेगा कि कभी यह रूप देखा ही नहीं। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि रहेगी।

0: मनशान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति।
3: आठवां अध्याय आभूषण स्वरूप शिशु को शक्ति प्रदान करना। तदुपरांत भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि बालक के गले में पहना दी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे अपना मुकुट पहनाया और धर्मराज ने रत्नों का एक दिव्य अलंकार धारण कराया। इसी प्रकार समस्त उपस्थित देवी देवताओं ने अपने अपने आभूषण आभरण अलंकार आदि प्रदान किए। तब सब प्रकार से संतुष्ट हुए शिवजी ने बालक का स्तवन किया। बोले, गजानन, आपके यहाँ आने से मैं धन्य हो गया। नर देहे पर गज का मुख कैसा शोभायमान प्रतीत होता है, जिसका वर्णन भी इस वाणी से नहीं हो सकता। इस पर सभी देवताओं ने आभूषण आदि के रूप में तुम्हें शक्ति प्रदान की है, इसलिए तुम सदैव विजय रहोगे। सुर असुर दैत्य राक्षस मनुष्य नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारी समता कर सके। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवाधिदेव, हे गजमुख, तुम सभी शास्त्रों समस्त विद्याओं समस्त कर्मों में स्वयं सिद्ध निशांत हो। अन्य तो क्या, मैं भी तुम्हारे पांडित्य का सामना करने में समर्थ नहीं हूँ। हमारी प्रार्थना है कि तुम सदैव देवताओं के पक्ष का निर्वाह करते रहना। इसके पश्चात समस्त उपस्थित देवताओं मुनियों गंधर्वों किन्नरों यक्षों अप्सराओं देवियों आदि ने भी विभिन्न प्रकार से अपने अपने मतानुसार गजमुख की स्तुति की। तदंतर शिव शिवा दोनों ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न मणि आदि का दान दिया। वंदीजनों को सैकड़ों हजारों हाथी घोड़े प्रदान किए। तदुपरांत शिव शिवा ने मंगलोत्सव मनाते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा वेद पाठ एवं पुराण पाठ के भी आयोजन हुए। नृत्य गीत आदि भी चलने लगे। अप्सराएं और सुर वनिताएं विविध प्रकार के नाच द्वारा उत्सव को और भी अधिक शोभायमान बना रही थीं। इस प्रकार यह उत्सव दीर्घ काल तक निर्बाध रूप से चलता रहा। शनिदेव को माता पार्वती का शाप। बेचारे शनिदेव अभी उसी प्रकार नीचा मुख खड़े किए थे। वे संकोच के कारण ना तो जा सके और ना उत्सव में ही भाग ले सके। तभी माता पार्वती जी की शनि देव पर दृष्टि पड़ी तो उन्हें क्रोध आ गया। शनि देव को लज्जा से सुकड़े हुए देखकर माता पार्वती क्रोधित हुई और उन्होंने शनि देव को शाप दिया कि तू सभा के मध्य में ही अंगहीन हो जा। सूर्य देव कश्यप तथा यमराज का माता पार्वती पर क्रोधित होना। माता पार्वती के द्वारा सूर्य पुत्र शनि को इस प्रकार शाप दिए जाने पर भगवान सूर्य देव कुपित हो गए और लाल नेत्रों से देखते हुए बोले, सभी उपस्थित सज्जन देख लें कि गिरिजा ने मेरे पुत्र को व्यर्थ ही शाप दिया है। उस बिचारे का किंचित मात्र भी दोष नहीं था। वह दर्शनार्थ आया था और गिरिजा की अनुज्ञा प्राप्त करने पर ही उसने बालक की केवल झलक ही देखी थी। फिर अब जबकि बालक पुनर्जीवित हो गया और उसी उपलक्ष्य में उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो इस अवस्था में उसे शाप देने का प्रयोजन ही क्या था। कश्यप और यमराज भी क्रुद्ध हो गए और तीव्रता से कहने लगे, शनि का कोई अपराध नहीं था। जब जो कुछ भवितव्य होता है वह होकर ही रहता है। फिर शनिश्चर तो लज्जा से सिर झुकाए खड़े थे, इसलिए उन्हें अभिशप्त करने की अपेक्षा उन पर दया करनी चाहिए थी।

0: सूर्य देव आदि का भगवान विष्णु से भी रुष्ट होना। इसी प्रकार कुछ अन्य देवता भी उठ खड़े हुए, क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे थे, होष्ठ फड़क रहे थे और आवेग के कारण शरीर कांप रहा था। तभी वे पुनः बोले, इस शाप की प्रमुख अपराधिनी गिरिजा और दूसरे अपराधी विष्णु हैं। हम इन दोनों को ही आज ऐसा शाप देंगे कि यह जीवन भर अपने कर्म फल रूप का स्मरण रखें। यह कहते हुए वे जग जननी माता पार्वती जी और भगवान श्री हरि को शाप देने को उद्गत हुए देखकर ब्रह्मा जी उठे और उन्होंने उन सबको इस प्रकार समझाया, हे दिनकर, हे कश्यप, हे यमराज एवं अन्य न्याय देवगण, इस विवाद को शांत किया जाना ही श्रेयस्कर है। जो कुछ होने वाला था वह हो चुका। अब आगे किसी के भी द्वारा शापों का आदान प्रदान होने से हम सभी की हानि है, क्योंकि उससे दुष्कर्मी असुर आदि अधिक प्रबल हो जाएंगे, जिसके फल स्वरूप हम सभी को तिरस्कृत और भयभीत रहना पड़ेगा। अतएव विवेक से काम लेते हुए क्रोध का निवारण करो। श्री हरि और माता पार्वती का शाप देने को तैयार होना। उधर विष्णु जी और पार्वती जी भी उन्हें शाप देने को उद्गत हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनके प्रति भी ऐसा ही निवेदन किया, भगवान आप सभी के ईश्वर, ज्ञान और बुद्धि के प्रेरक, काल के भी नियंता एवं सर्वसमर्थ हैं। आपका क्रोध समस्त त्रिलोकी को भस्म करने में समर्थ है, तथा हे जगन्निवास, यह समस्त विश्व आपने ही उत्पन्न किया है, तो अब आपके ही शाप से नष्ट नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि आप क्रोध को त्याग कर शांत होने की कृपा करें। फिर उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। आपके निमेश उन्मेष में ही संसार का विनाश और प्राकट्य निहित है, इसलिए आपको शिवा कहते हैं। हे कल्याणी, आप अन्य किसी की बात पर ध्यान ना देकर मेरी बात मानिए। इस जगत को नष्ट होने से बचाइए परमेश्वरी, अन्यथा घोर विनाश उपस्थित हो सकता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के कोमल एवं सार गर्भित वचन सुनकर महर्षि कश्यप बोले, पितामह, यह बेचारे शनिश्चर तो पत्नी के शाप से दृष्टि दोषी हो ही गए थे और वह तथ्य इन्होंने छिपाया भी नहीं। बालक की माता ने इनके दृष्टि दोष जानते हुए भी बालक को देखने की आज्ञा दी और तभी उन्होंने उसे देखा था। तब उसके छिन्न मस्तक होने में इन बेचारे का क्या दोष रहा। तभी सूर्य बोल पड़े, मेरे पुत्र ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक की माता से आज्ञा ली। तभी उनके पुत्र की ओर देखा, फिर उस निरअपराध को अंग भंग होने का शाप दे डाला, इसलिए अंग भंग को रोका जाने पर ही शांति संभव है। यमराज बोले, गिरिराज नंदनी ने स्वयं ही देखने की आज्ञा दी थी, तब मुझे साक्षी बनाकर शनि देव ने उस बालक को प्रयत्न पूर्वक स्वल्प ही देखा था और जब बालक का अंग भंग होने के पश्चात वह पुनर्जीवित हो गया तो भी शनि देव को शापित कर डाला। इसलिए यदि हम लोग किसी बाधिक को शाप देना चाहते हैं तो उसमें दोष ही क्या है। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग शांत हो जाएं, मैं शीघ्र ही वह यत्न करूंगा कि माता पार्वती के शाप का विमोचन हो जाए। माता पार्वती जी ने सहज चंचलतावश शाप दे डाला। वह उनकी भूल थी, किंतु सज्जनों द्वारा तो बड़े से बड़े अपराधी भी क्षमा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पितामह ने उन सबको शांत किया और फिर शनिदेव से बोले, ग्रहेश्वर, तुम तुरंत ही देवी पार्वती की शरण में चलो, तुम्हारे शाप का निवारण उन्हीं की कृपा से संभव है। यदि तुम्हारे पिता और उनके पक्ष वाले देवता माता पार्वती को शाप दे भी दें तो उससे तुम्हारे कोई उपकार नहीं हो सकता, इसलिए आओ मेरे साथ। चतुरानंद का आदेश मानकर शनि देव उनके साथ माता के आश्रय में पहुंचे और तब ब्रह्मा जी ने माता पार्वती जी से निवेदन किया, जगजननी, हे दुर्गे, आपने अपने पुत्र के दर्शन की आज्ञा दे दी थी तो शनि देव का क्या दोष था, फिर भी आपने उन निर्दोष को शाप दे डाला, इसलिए अब उस शाप का प्रतिकार होना आवश्यक है। माता पार्वती द्वारा शनिश्चर को वर प्रदान करना। माता पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात पर कुछ देर विचार किया और बोली, पितामह, मेरा शाप अमोघ है, उसका व्यर्थ होना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज नंदनी, इसका कुछ उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा सूर्य, कश्यप, धर्म आदि देवताओं के कोप से तीनों ही लोग भस्म हो जाएंगे। माता पार्वती बोली, चतुरानन, मैं शाप दे सकती हूँ तो वर भी दे सकती हूँ, इसे और इनके पक्ष के सभी देवताओं को मैं वरदान देने से संतुष्ट कर दूंगी। ब्रह्मन, आप उन सभी को यहाँ बुला लीजिए। सूर्य आदि सभी वहाँ बुला लिए गए। उन्होंने आकर जगजननी के चरणों में प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए बोले, परमेश्वरी, कृपा करो, इस निर्दोष शनिश्चर को अपने अनुग्रहात्मक दृष्टि से निहारिए। इस प्रकार से सूर्य, कश्यप आदि द्वारा किए गए स्तवन से शिवा संतुष्ट हो गईं और शनि देव के प्रति कहने लगी, ग्रह राजो भव शने मदवरेण हरि प्रियः, चिरजीवी च योग निद्रो हरि भक्तस्य का विपत्। हे शने, तुम भगवान श्री हरि के प्रिय हो, मेरे वरदान से ग्रहों के राजा होगे, योगियों में परम योगी रूप योगिंद्र और चिरंजीवी बनोगे। अरे, हरि भक्त का विपत्ति क्या कर सकती है, मेरा यह भी वर है कि भगवान श्री हरि के तुम परम भक्त हो, तुम्हारे हृदय में उनकी दृढ़ भक्ति रहेगी, परंतु वत्स, मेरा शाप अमोघ होने के कारण नष्ट तो नहीं हो सकता, किंतु उसका किंचित प्रभाव पांव पर ही पड़कर रह जाएगा, तुम कुछ लंगड़े हो जाओगे। माता पार्वती जी के वचन सुनकर शनिदेव को संतोष हुआ, साथ ही सूर्य देव, कश्यप देव, धर्म देव आदि भी संतुष्ट हो गए और गिरिराज नंदनी की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप महान हैं, हम तुच्छ प्राणी आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं, आप संसार की स्वामिनी हैं, आपके दृष्टि मात्र में ही संसार का उत्थान और पतन निहित है, यदि आप क्रोध पूर्वक हैं तो विनाश और प्रसन्न होकर देखती हैं तो विकास एवं सुख ही सुख है। हे जगजननी, हम पर ऐसी कृपा अवश्य करें कि हम आपके चरणों को सदैव याद रखें और आप मातेश्वरी का अनुग्रह निरंतर प्राप्त करते रहें, हम पर कभी कोई विपत्ति ना आवे और हम किसी प्रकार के दुख में ना पड़े, आपकी ऐसी कृपा में ही हमारा कल्याण निहित है। माँ भगवती उमा उक्त स्तुति को सुनकर प्रसन्न होती हुई कहने लगी, देवगण, मैं आपके स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हुई, आपने जो कुछ भी अभिलाषा की है वह सब पूर्ण होगी, आप पर प्रथम तो कोई संकट आवेगा ही नहीं और कभी आया भी तो मैं अपने दुर्गा रूप में आपके स्मरण मात्र से पहुंचकर रक्षा करूंगी। अब आप सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को पधारें, निश्चय ही मेरा अनुग्रह आप सबके साथ है। अब पार्वती जी ने बालक को गोद में उठाया और उसे पुचकारती हुई प्रसन्न मन से अपने भव्य सिंहासन पर विश्राम करने लगी और तब शनेर जगाम देवानाम समीपम हृष्ट मानसः प्रणम्य भक्तयाताम ब्रह्मनम्बिकाम जगदम्बिकाम। प्रसन्न मन हुए शनि देव माता जगदम्बा को प्रणाम करके अपने पिता सूर्य आदि देवताओं के पास चले गए। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।